मले साइलात्रे लियावनो केटी रसायन है आदेवते पातुले में तिबु हैं गीम टिके बिली गत्ता थार के निहान रखला नुम्बे एकम एक बैल मगट मुलु आत्मे मादा तब बही विलासी है ना विशाकुनात आदरे थाव में हिते इल्लन्ने म एरी तुम रासमाए मरने तरम नहुरु एरी तुम रासमाए ते इल्लन्ने प्रार्थना दे उमिनी आत्मे तरक निहंदकल नुम्बे एकमेक विश्य बैल मक पहास्स

आगे स्कूल क्रश एक है बहन उन्हें सुन रही ने तरंग ओ एक है बहन उन्हें सुन रही ने थामत मंगा दरे करन लसन महीने आक ऐ में क्या अन्य जीवा अत्ता अदरे होया गे न मिरिंगु अक पसु पसु हम बागे मामा अनंत ऐ दिया अदरे दाकिना हादवते पसारु करन वेदना वकिन मांग होय ना अदरे अत्ते अनंते निर्नामिका අනන්තයක් දුර ඈතක් බලාගෙන ඔබේ කල්පිත ලෝකයෙන් ප්‍රේමය හොයාගන්න එකත් අමුතු මායාවක් දන්නවද ඒක?

आगे हरे उन्हों हमक मतक में न कुछ हरे लामे नहीं थे ना ना ये उन्हों हमें तरह मेहलो की सुंदर मतन मैंने एका क्या नवा थी था गन बाय ना अरे यार ये प्यार कैसा होता है ये प्यार कैसा होता है क्या नमित्रिया ओया टट्टे है मंदा मैं आदरे को हमें दाते मैं आदरे टे है तो मुकद्दा

DJ Victor की विनाडी 20 का सेशन ने केवरा में था विनाडी तुनाई तीन मेरे दी कमेंट सेक्शन ने का तिस्ता हासे सीमा होती है ना वा मंगियाने में विनाडी तुने मुकद किया ने तब तुम दाह क्वेडी करो मुद विनाडी अगर दाह बेरी ने मेरे दी तेह मत आम यावे अभी बालमू प्रतिपाल सटाने को हम दी